0: मिङ्गा चुवै त कास न नलिगु सिन्तिरिस पा समुख बनेका नाचा रिगुस पा लिका वंगिमंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा पा समुख याने हम पिन्ने चैता का न्यापस कचम से जन छम बिशुन से मर चे ऑफिशियल लिखे रोयल चिंबी तब वाकु चिल का कुन मा कुछ तो न्याचं की कंसे ते
0: निका कई बिन्दिस तुम्हारी ताई तमाई चो
1: या या चिंदा कचारिशुन ऐस्ता कुनास ऐस्ता